ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो bramptoncashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, आज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। जदों किसी की नजर धुंधली होनी शुरू हो जाए जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जाते ने। गड्डी चलानी मुश्किल, टीवी देखना औखा, ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इसलिए बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। यह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नु भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलदे ने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597
2: ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है। गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबाणी रेडियो दियां सर्विसेज लई। भावे तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो, नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ, तुसी ढिलों वीडियो नु कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट, जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, नितनेम दियां सारियां बाणियां ने, ढाडी वारा ने, 300 शब्द ने, 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी, टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो। IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर सत्ते दिन खुले ने 11 to 8। 905-204-1313 905-204-1313
1: स्पिरिट। हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घरां लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰ, ਵੈਨ, SUV ਲੈਣਾ, ਟੌਪ ਟੌਪ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ। ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰਵਿਸ, ਨੰਬਰ 1 ਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਓਨੈਸਟ ਟੀਮ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਸੋ ਕਾਰ, ਵੈਨ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ 905-828-5800 905-828-5800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
3: ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
4: S&S ਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
5: ਜੇ ਬੇਸ ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਐਸ ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 9057

0: क्या बात है जी, 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लाना थोड़ा, फेवर तो करो, विंडोज बनांदे हैगे, उन्हां दी ऐड आंदी सी अपने इत्थे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी,
0: 647।
1: हाँ जी,
0: 926।
1: हाँ जी,
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। किथे
0: सारे कितने आ जाएंगे भाजी, इन्हें कॉल कर लियो, कह दियो कि पंजाबी लहरा रेडियो तो नवी तो लिया नंबर।
1: हां जी हां जी,
0: जिथे तुसी कहोगे भाजी पहुंच दे कर देंगे।
1: थैंक यू वेरी मच सर।
0: नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड कोई भी नंबर लेने होंगे जी सदके, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। एक तो साडा इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लहरा, उत्ते मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए, या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो, तो असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके, अपने ना व्यामा ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा वो किसी व्याह ते गया ते वो ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया ते उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया, ते बड़े लोकां ने उस चीज़ नू कितना किते क्रिटिसाइज कीता कि यार तू व्याह ते आया ते तू खाना लैके जा रहे हैं घरे, की चंगा लगता है? जिन्ना खाना उत्थे खा इहदा मतलब ये थोड़ा भी तेनू किसी ने सद लिया ते तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उन्हां ने नहीं माइंड कीता तां फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट हुंदा। वेस्ट होण तों वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जिहड़ा वो डब्बियां च पा लो, नाल लै जो, फिर की हो गया? सो थोड़ा की ख्याल है, इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड, या थोनू कोई इस चीज नाल कोई गलत नहीं लगता है? नंबर है अपना 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337। कॉल कर रहे हो होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी, ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 905-673-3337। देखते हैं जे कोई थोड़े व्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे, जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लैके भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा, डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवांगा। विल बी बैक।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुत्तल क्यों यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

इंसानों की गलियों से इंसानियत ना मिली, इंसान ना मिला। इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली, भगवान ना मिला।

0: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 9054512600 9054526200।
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
4: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों, क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
5: क्यों नहीं खाना चाहेंगे? तवा किचन दे रहा है ना, अमृतसरी कुलचा 2 for 10, बिरयानी 2 for 10, न्यूट्री कुलचा 2 for 10।
6: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
2: तवा किचन एट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-450-2600 9054512600।
6: इतना ही नहीं, ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है $10 फॉर टू।
7: भैन जी, तीजा भी आया कैनेडा दे विच। ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट, ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी। छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने। जो दूजी बारी खाना लेन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
8: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहवा तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या।
1: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेदा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
9: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु, ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
10: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है। ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
1: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेदा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
9: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नू, ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
11: हां जी, हसे गाल जी, अपनी कंपनी मिसी सागा, आपां नू कैटरिंग दी लोड़ सीगी ते आपां तवा किचन नाल कॉन्टैक्ट कीता। आपां नू 50 बंदे दी कैटरिंग करवाई सी ते आपणे करीबन 55 तों 60 बंदे सीगे। फिर भी कैटरिंग उहनां कोल मतलब बहुत ज़्यादा सी, सानू कोई थोड़ नहीं आई। असी रिकमेंड करदे आ तुसी भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तों। थैंक यू सो मच।
1: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेदा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
12: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
13: ले दस, काम तो जामा के करे रोटियां बनावा।
12: तो टिफिन लवा ला।
13: घर दा स्वाद कित्थों मिलदा वारो?
12: मतलब तू तवा किचन दा फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। कस्टमाइज्ड टिफिन पैकेजेस अवेलेबल। फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
1: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेदा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
14: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो? कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो? फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस, 28 एकर लैंड विद 2 रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गैराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप। यही नहीं, 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम, फेयर डी रियल्टी, ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000 90।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारिआं दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही प्यारे जे शो रेडियो आवाज़ 'च। ते तुहाडा ते साडा साथ बनिआ रहेगा पूरे सवेरे 10 बजे तक, ते तुसी सुनदे रहो तुहाडा प्यारा शो रेडियो आवाज़।

0: मिल्टन फोर्ड से है, ये इनका फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और अनिल जी इतने मतलब जो स्टॉलवर्ट एक वर्ड कहा जाता है वो है इंडस्ट्री में, जो मतलब कार्स की इंडस्ट्री में है। तो मिल्टन फोर्ड से अनिल जी है, इनको 40 साल से ये इंडस्ट्री में है। इनके जब भी मैं जाता हूँ इनके पास, इनके ऑफिस में ऑलवेज एक वेलकमिंग एक फीचर मतलब एक इनविटेशन होता है, अनिल जी हमेशा खुद पर्सनली आते हैं, कुछ और समझाते हैं। तो मिल्टन फोर्ड पे भी अगर आपको, हम हमेशा मैं कहता हूँ आपको गाड़ी अगर कभी भी लेनी है तो एक बार आप कोई भी गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले एक बार मिल्टन फोर्ड जरूर ले जाइए, आप देखिए उनके पास गाड़ियां देखिए, उनके ऑफर्स देखिए और उनकी जो डील्स देते वो देखिए। आप दूसरी गाड़ी छोड़ के मिल्टन और फोर्ड और लिंकन की गाड़ी जरूर खरीदोगे, ये मेरी आपसे एक गारंटी है, बिकॉज इतने अच्छे से वो आपको अटेंड करते हैं और बढ़िया, सबसे बढ़िया कस्टमर सर्विस है इनकी टीम की। तो इनको आप मिलना है तो पहुंचना कहाँ पे जी, 655 मेन स्ट्रीट ईस्ट में, मिल्टन फोर्ड। अनिल जी मैं आपका जो ऑफिस वाला नंबर है वही दे रहा हूँ अभी, आई होप इट्स ओके जी। मिल्टन फोर्ड का नंबर है 416-302-9941 पे आप कॉल कर सकते हो, इसके अलावा 905-875-3673, ये दो नंबर है मिल्टन फोर्ड के
1: जी।
0: मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, 416-302-9941, 905-875-3673 पे आप कॉल कर सकते हो।
1: नंबर है 416-302-9941-905-875-3673। ते अनिल जी आप तुसी कुछ एक दो गड्डियां दे नाम दस दो जेडियां अज स्पेशल डील्स हैगियां आ। वैसे मैनू पता तुहाडे कोल एक दो नहीं, तुहाडे कोल लिस्ट ऑफ कार्स होणगियां, बट तुसी बेस्ट दो तीन दस दियो।
2: I just want to mera call kar de ke commercial driver, I want to make sure his team Milton want to wish one his best of his health.
0: Ji,
2: and we want him come back soon. You guys doing a great job.
0: जी जी, थैंक यू सो मच जी। आई थिंक अनिल जी का मतलब ये देखो एक वेरी सिंपल मोटो है जी, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया, डील्स गाड़ियां तो आती जाती रहती है, बट जो कस्टमर के चेहरे पे एक स्माइल दिलवाने की जो बात कही है, इट इज लाइक वेरी गुड गेस्चर। तो यही
1: वही बात है ना पंकज जी, स्माइल कैसे आती है एक कस्टमर केयर के साथ, प्लस अगर हमारे पैसे बच रहे होंगे और साथ में हमें इतनी अच्छी कस्टमर केयर और हमें इतने अच्छे इंसान से मिलना हो जाए तो स्माइल तो अपने आप आती है। जैसे हमें पता चला अनिल जी फोन पे है स्माइल साडे फेस से अपने आप ही आ गई। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सारे ने पहुंचना है मिल्टन फोर्ड और एक तो एक बेस्ट डील्स है 416-302-9941-905-875-3673। आई बेट यू गाइस तुसी गड्डी लैन जाओगे, लेके ही आओगे, सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं, क्योंकि इन्हां कोल डील्स ही बहुत प्यारियां है। सो पुरानी गड्डी भी हैगी है, कॉल करके तुसी कन्फर्म करो कि किवें तुसी उन्हें कर सकते हो चेंज। थैंक यू सो मच अनिल जी।
2: थैंक यू जी, थैंक यू ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू। सो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर है 0026, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ।
3: ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਾ।
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ।
0: ਸੇਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6479100 95। मैं नंबर फिर से एक बार बोलता हूँ, 6473259100।
3: ओके थैंक यू वेरी मच
0: जी। पवन डायमंड इंश्योरेंस है, पवन कौर गिल है
1: जी। सो पवन कौर गिल जी सारे ने कॉल करनी है और ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 647-325-9100। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 6473259100। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 3576। ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3576 ਹੈਲੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ 2884।
4: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
4: ਜੀ, ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਸੰਬਰ।
1: 10 दिसंबर जी तुसी सानू अपना नाम

0: दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे हो। साड़ी अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535 विद शाबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों लई खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए पाँच बाहपा, मैं आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
4: Punjabi Versa!

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
4: क्रिटिकल मॉर्गेज, आरईएसपी, आरआरएसपी, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
4: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
5: एक नंबर होर नोट करो साढ़े वीरां दा जिन्होंने डक्ट क्लीनिंग करवानी है घर दे विच 149 दे विच 3000 स्क्वायर फुट दी डक्ट क्लीनिंग होएगी। तुहाडा घर 2700 2800 हुण

0: बच्चों, हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
1: 32, 55, 80, 98।
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
1: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते।
3: होमगार गड्डा सिंह रिपोर्टिंग सर।
2: मेरा दिल करदा मैं दूर कल्ले थां दे उपर भज जावां।
3: मतलब कल रहने जी करदा
2: तेरा? हां, अजकल मेरा मन जिया नहीं लगता।
3: ओए होए होए होए होए होए
2: की करिए दसो।
3: मेरा ते बड़ा ही सौखा इलाज आ।
2: केड़ा?
3: तू आए कर टिकट ला इंडिया दी
2: ते फिर
3: उठे जाके ना ते कबरा कुबरा च रह तीन चार रात।
2: गंडा सिंह जी, मैं थोड़े नाल ना अपने
3: क्योंकि इंडिया के हिसाब नाल ओही थां है जिथे कोई बंदा जाके राजी नहीं, बाकी थां ते बंदे ते बंदा चढ़े फिरदा।
2: हेलो,
3: वैसे एक चीज है, सदके जावां
2: कादे
3: अपने प्रॉपर्टी डीलर वाले दी।
2: अच्छा,
3: उन्हां दी नजर बाकी ते छप्पड़ रूड़ियां सब ते पै गई जे मड़ियां नहीं पई।
2: हां वैसे
3: नहीं ते उत्थे भी लेके ला दन प्लाट ही प्लाट।
2: उच्चा नीवा हर तरह दा।
0: हर कोई चाहता है कि ओदा घर सब तो सोना दिखे, ते जे तुसी भी यही चाहते हो तो मिलो ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड वालिया नू। जे अपने घर दे बैकयार्ड नू बनाना चाहते हो होर भी खूबसूरत, या फिर करवाना चाहते हो लैंडस्केपिंग या इंटरलॉकिंग, सारा कम टॉप दा करांगे अते सब तो बेस्ट रेट्स भी देंगे। ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग, कॉल 6474-784-1213।

0: हेलो
1: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
0: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दिया टिकटा चाहिदियां सी।
0: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो, बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदियां ने। ते हाँ, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर एंड ट्रैवल।

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी किसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं हाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं हाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905 564 64 44 905 5

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है, भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती। ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 बिलियन काट दिए हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं। आइए सरकार से कहें हमारे बच्चों में निवेश करें, क्लास साइज ठीक करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो की ओर से एक संदेश।
1: In 1980, Terry Fox started a marathon against cancer. Today, you can help finish it. Join us at the Terry Fox Run on September 20th. Register and fundraise for cancer research at terryfox.org.